0: 90.5.
1: If you'd like to know more about us, jump onto our website.
0: www.alive905.com.au.
2: Hello, I'm Kim Cartwright. Four men are now facing charges after an alleged home invasion and child abduction in the New South Wales Hunter Valley. Police say a group forced entry into a Muswellbrook home, assaulting a resident and fleeing with two children aged 4 and 7. One suspect was caught immediately after the incident last month, while three more men were arrested yesterday and are now before the courts. A distillery owner has been charged over the methanol poisoning deaths of two Australian teenagers in Laos. Chris McCarthy reports.
3: Holly Morton Bowles and Bianca Jones were among six who died after drinking tainted alcohol in 2024. Two Danish citizens were also killed in the incident, with the country's officials saying the business owner faces up to 4 years in prison for selling hazardous food and operating illegally. The case will remain formally open for 15 years, meaning charges carrying heavier penalties could be brought. It comes after loved ones of the Australians were previously told the maximum sentence could be just 1 year, sparking a number of representations from federal politicians. Chris McCarthy reporting.
2: WA's Deputy Premier denies claims from the Prison Officers Union that nothing is being done to improve the prison system. An officer was injured in a disturbance at the maximum security Casuarina prison on Thursday. The union claims understaffing is to blame. Rita Saffiotti says expanding prison infrastructure is their priority at the moment.
4: We've got significant funds allocated to expand the prison accommodation. That work's underway, and I'm looking forward to working with the new minister. Of course, the former minister was a very strong advocate for his portfolio, and the new minister. As I said, there's money that's been allocated both at mid-year review and budget to expand in relation to the construction. It's really about now delivering some of our commitments.
2: A 24-hour teachers' strike in government schools in Victoria could still be in play for this Thursday, with the education union's bid for better pay and conditions far from settled. Teachers are set to vote on Tuesday whether to accept a new state government offer, including a 28% pay hike. Class sizes and pay increases for teacher support staff remain sticking points over the deal. A man at the wheel of a truck that was hit by a train in Perth in May has faced court on 5 charges. The late afternoon crash at a level crossing in Guildford left a woman and 2 teenagers with injuries that needed hospital treatment. About 100 passengers on the train suffered a severe jolt. 3 parked cars were hit by debris, and the train and railway line were also damaged. The 33-year-old driver from the Perth suburb of Ballajura faces charges including dangerous driving, causing bodily harm, and driving with a prescribed illicit drug in his system. The sporting world is mourning the loss of West Indian cricket legend Sir Garfield Gary Sobers, who's died aged 89. Widely considered one of the greatest all-rounders to ever play the game, Sobers redefined the sport across a 20-year international career. The iconic batsman and versatile bowler held the world record for the highest individual test score for 36 years. This is AIR News. The Sydney Roosters have popped into second place on the NRL live ladder after a win last night. Sherry Daniel with the results.
5: It was a 14-6 win for the Sydney Roosters over the Melbourne Storm at the Sydney Football Stadium. The Storm's injury crisis deepened with a potentially season-ending Achilles injury to Will Warbrick. Roosters half Sam Walker told Nine they were tough opponents.
6: Yeah, they turned up. Yeah, all credit to them. Obviously losing a fair few players and obviously losing your winger during the games. Always tough there. And yeah, it was definitely a battle out here. Pretty wet, slippery conditions. The field's chalking up pretty bad out here. But yeah, happy to get the 2 points. But there's definitely a lot to work for.
5: In the early game, the Cronulla Sharks defeated the Newcastle Knights 20-18 in Cronulla. Terry Daniel, Air Sport.
2: Lions veteran Dane Zorko won't be taking West Coast for granted in tonight's clash. Brisbane are fourth on the ladder while the Eagles are struggling at 16th. Zorko says the team is still fierce competition.
7: I saw that last week against the Western Bulldogs. They played some superb football. Unfortunately for them, they couldn't get the result done, but they play enough games like that, they're going to win a lot more, and you can certainly see the direction they're heading in. So, yeah, we're wary, no doubt about it.
2: Last night, the Adelaide Crows had a 16-point win over Sydney Swans, 13-9-87 to 10-11-71 at the SCG. And Aussie golfer Lucas Herbert has raised eyebrows at the round 2 of the Open Championship. He now leads the standings by a shot after hitting a round of 62. Australian Independent Radio News.
0: Around the world.
1: Around.
8: नमस्ते और आपका स्वागत है इंडिया कनेक्ट में मेरे वीना शशि कुमार के साथ. और आज मैं आपसे एक अनोखे कलाकार से मुलाकात करवाऊंगी जो इंडिया से हैं. उनसे हम थोड़ी बातचीत करेंगे कि उन्होंने उनका जो सफ़र शुरू किया है, जहां में इन कलाकारी की दुनिया में उनकी सफ़र कैसे शुरू हुई, इसके बारे में हम बात करेंगे. और थोड़ी सी बात करेंगे हम कि सिडनी में क्या हो रहा है, कुछ अच्छी चीज़ें जो मुझे पता चली हैं उसके बारे में बताएंगे और उसके बारे में बात करेंगे. तो आपका स्वागत है आज के शो में. पहले तो मैं आपसे पहले ये बात करना चाहती हूँ कि पहले इंडिया में हम टीवी तो अभी रिसेंटली आई हुई है ना, कुछ 100 साल पुरानी वाली चीज़ है टीवी, रेडियो, ये सारी चीज़ें कुछ 100 साल पहले जो एंटरटेनमेंट की दुनिया शुरू हुई है. तो उसके पहले क्या होता था, उसके पहले भारत में कहानी का सिलसिला काफ़ी अच्छा चलता था और काफ़ी हर प्रांत में एक अलग कहानी का सिलसिला चलता था. तो पहले तो नॉर्थ में अगर देखें तो कठपुतली तो हम सभी जानते हैं, जैसे वो उसको आई थिंक राजस्थान में कहते हैं कावड़ कथा. सो जहाँ एक वुडन कठपुतली जिसके जो राजा रानी की कहानियाँ बताता था, तो हर गांव में वो लेके जाते थे, एक डब्बा रखते थे, उसके पीछे से जो स्ट्रिंग कठपुतली को करते थे, चलाते थे, सूत्रधार जो कहानी बताते थे, तो वो पहले होता था. फिर साउथ इंडिया में देखें तो फिर है यक्षगण जो कर्नाटका का है, फिर तमाशा जो महाराष्ट्र का है, उसके बारे में भी एक मूवी भी आ रही है जो श्रद्धा कपूर जिसमें एक्ट कर रही हैं, ईथा जो मूवी आ रही है महाराष्ट्रीय तमाशा कलाकार के बारे में. फिर है तेरीकुत जो होता था स्ट्रीट प्ले जैसे साउथ इंडिया में, तमिलनाडु में स्पेशली होता था. फिर कथकली जो केरला में होता था. कथकली और यक्षगण थोड़ा बहुत सारी कॉमन चीज़ें हैं इसमें, लेकिन ये सब ये होता था कि कहानियाँ सुनाते थे हर जगह पे जाके, हर प्रांत में, छोटे गांव से लेके शहर में लेके. पहले वो ढिंडोरा बजता था, आओ आओ आके देखो कहानियाँ देखो. तो ये एक हमारे भारत देश का एक अंग है भारत देश का, कहानियों का, रामायण की कहानियाँ, महाभारत की कहानियाँ, राजाओं की कहानियाँ, रानियों की कहानियाँ, तो ये बहुत होती थी. लेकिन अब क्या होने लगा है, जैसे फेसबुक आ गया, इंस्टाग्राम आ गया, सब लोग दो दो तीस तीस दस दस सेकंड की चीज़ें देखते हैं और आगे बढ़ जाते हैं. तो ये कहानियों का सिलसिला मुझे लगता है ख़त्म सा होने लगा है. लेकिन जो हम 70s, 80s, 90s हम जो हैं, हम अपने आप को बच्चे ही कहेंगे हम अभी भी ये कहानियों का सिलसिला जारी रखना चाहते हैं. और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस कहानी के बारे में कहानियों का सिलसिला जारी रख रहे हैं, जैसे थिएटर है, जैसे मैंने पहले बताया था कहानी नानी, और बहुत सारे ऐसे पॉडकास्ट आ रहे हैं सिडनी के लोग जो कहानियाँ बताने की कहानियाँ बता रहे हैं और पुरानी कहानियों के अडेप्टेशन हैं जो इनको समझ में आता है उसके हिसाब से चेंज कर दिया है कहानियों को और मॉरल भी चेंज कर दिया है उसका. तो या फिर जैसे हमें समझ में आता है या क्या समझाना चाहते हैं तो इसके हिसाब से चेंजेस किए हैं. तो इसके बारे में हम और बात करेंगे. लेकिन आपको अगर हिंट देना हो तो आज की हमारी जो कलाकार हैं वो थोड़ी सी कहानियों में भी हैं, तो इसके बारे में हम बात करना चाहेंगे. तो लगे रहें आपके आपके सुनते रहें और मैं ज़्यादा इसके बारे में बाद में बात करती हूँ. इससे पहले NSW हेल्थ का एक विशेष सूचना. टीकाकरण खसकर, काली खांसी आदि गंभीर बीमारियों से बच्चों की रक्षा करता है. अपने डॉक्टर से बात करके ये सुनिश्चित करें कि क्या आपके बच्चों को समय अनुसार सभी टीके लग गए हैं. इसके साथ अच्छा ये आज के गाने भी आज के हमारे कलाकार के रिक्वेस्ट.
1: And all the great music
0: on your sound, your community.
1: Alive 90.5.

0: just moved from overseas? Start banking like a local with ANZ. We're one of Australia's biggest banks and we're chosen by millions. For customers living in Australia, available in English only. Consider if right for you. Eligibility criteria and T&Cs apply.
1: Looking for a fresh approach to real estate? At Bookfitch Estate Agency, we put people first, making the process smooth and stress-free. Whether it's selling your home, managing your investment, or finding your next move, we're here for you. Discover how property should feel professional, personal, and tailored to you. Visit us online at bookfitchestateagency.com.au or follow us on socials today.
2: Station sponsor. Adriano Coluccio Funeral Services is an Australian-owned and operated funeral home providing dedicated, dignified, versatile and professional funeral services, assisting community members in their time of grief and loss, regardless of ethnicity and religion. Our commitment and compassion is dedicated to setting the highest standard in funeral professionalism and supporting families through what is the most difficult time of their lives. Located in Smithfield and Miranda, servicing all Sydney areas, Adriano Coluccio Funeral Services, always with you. 9604 9604.
3: क्या आपकी आयु 65 साल या इससे अधिक है? इस बार सर्दियों में गंभीर रोगों से अपनी और दूसरों की रक्षा करें, इसके लिए टीकाकरण करवाएं। आपके लिए कौन सा टीका सही है, इसके बारे में अपने जीपी या फार्मासिस्ट से बात करें। And welcome to India Connect. तो इंडिया कनेक्ट में जैसे मैंने कहा था, मैं वीना शशि कुमार, आज मैं बात करने वाली हूँ पद्मासिनी जयराम से. ये इंडिया की एक कलाकार हैं जो यहाँ आई हुई हैं. आप पूछना मत कैसे मेरे हाथ में फंसी, लेकिन लेकिन अभी मेरे साथ बैठी हुई है स्टूडियो में और मैंने सोचा ये अच्छा एक मौका है इनसे बात करने का, इन्हें जानने का. तो पहले मैं आपको थोड़े इनके बारे में बता दूँ. ये दो साल पहले जब ऑस्ट्रेलिया में आई थी, इन्होंने एक तमिल संगम का एक परफॉर्मेंस था, स्टेज परफॉर्मेंस, जहाँ इन्होंने एक 4 मिनट की स्टोरी बताई थी.
4: नहीं, करीबन 15 मिनट का था. अच्छा, इट्स अ टैलेंट शो.
3: हाँ, टैलेंट शो में इनको बुलाया गया था, निमंत्रित किया गया था और उन्होंने 15 मिनट की एक कहानी बताई. ये अपना खुद का एक यूट्यूब चैनल भी चलाती हैं जहाँ अब तक कुछ 50 स्टोरीज तो डाल चुकी हैं. ये स्टोरीज 6 साल के बच्चों से लेके प्री टीन से लेके अडल्ट्स तक को भाता है. और इसके अलावा ये अपने स्टोरीज की जो कहानियाँ हैं खुद ही लिखती हैं और इसके जो चित्र हैं वो कहानियों के रिलेटेड जो चित्र हैं वो भी खुद बनाती हैं. इन्होंने कोविड के टाइम पे एक ऑनलाइन कोर्स भी किया था ऑनलाइन डायरेक्शन के लिए, नाटक, जो ऑनलाइन नाटक के लिए, जिसमें भी उन्होंने काफ़ी थिएटर शोज किए हुए हैं, ऑनलाइन शोज किए हुए हैं. सो वेलकम पद्मा जी शो के ये अलाइव 90.5 में. एंड थैंक यू, धन्यवाद आपका, आप यहाँ आके मेरे साथ वक्त बिता रही हैं.
4: थैंक यू सो मच वीना, धन्यवाद.
3: तो पहले आप मुझे ये बताइए कि आपका ये कहानियों का सिलसिला कैसे शुरू हुआ?
4: मीना, असल में बचपन से ही शुरू हो गया था, क्योंकि मैंने ये पाया कि जब मैं कहानियाँ, बनावटी कहानियाँ सुनाती थी, तो ना केवल मेरे दोस्त बल्कि मेरे रिश्तेदार, फैमिली मेंबर्स मुंह फाड़ के सुनते थे और मैं तो बस पटाक में, मिनटों में बना देती थी कोई भी भयानक भूत वाली कहानी या फैंटेसी वाली, और ऐसे सुनाती थी जैसे कि वो सच में हुआ हो. तो मैंने पाया कि एक पावर है मेरे पास लोगों को पटाने की. और स्टेज फियर तो का तो नामो निशान ही ना रहा, क्योंकि परफॉर्मेंस करते रही और बहुत फरमाइशें आती थी कि ये मिमिक्री कर दो, ये वाला गाना सुना दो. तो फैमिली के साथ शुरू जो हुआ अब तक चालू है.
3: बहुत अच्छी बात है. एंड मैंने देखा है, हम लोग को तो बचपन में ही कहते थे ना, लोग आते थे, चलो आ जाओ, खड़े हो जाओ, अपना तमाशा करो.
4: बिल्कुल. हाँ.
3: तो ऐसे मौके तो आपको काफ़ी मिले होंगे, लेकिन थिएटर में फिर आपकी थिएटर की दुनिया में आप कैसे आई?
4: वो तो कोविड के टाइम में एक ऑनलाइन कोर्स मिला मुझे करने, इट वाज कॉल्ड द रेड कार्पेट इंटरनेशनल. तो वो काफ़ी नामी वो है, वेस्ट बंगाल का है. तो वहाँ काफ़ी बुजुर्ग लोगों ने, दे ऑल, वी ऑल टुक पार्ट. तो उसमें एनरोल करने के कारण मुझे काफ़ी कुछ नुस्खे मिले, कैसे ऑनलाइन में यू कैन मैनेज योर बैकग्राउंड साउंड्स एंड एवरीथिंग. तो इनफैक्ट उसमें से जो मैंने बहुत सारे तकनीकें सीखी उसी को मैं अपनी स्टोरी टेलिंग में आज तक इस्तेमाल करती हूँ. और उससे मैंने बहुत सारे ऑनलाइन शोज भी करे हैं.
3: अच्छा.
4: डायरेक्ट किया है, प्लेज डायरेक्ट किया है.
3: अच्छा. मैंने तो आपका देखा हुआ यूट्यूब, उसका नाम पैडीज फील्ड ऑफ स्टोरीज है. हाँ, है
4: पैडीज फील्ड ऑफ स्टोरीज.
3: हाँ, तो पैडी आपका पेट नेम है, निक नेम है. हाँ, पद्मा बन गया पैडी. तो नहीं, ये तो मैंने देखा, आपने एक दो कहानियां मैंने आपकी देखी हुई हैं, आपके आने से पहले मैंने यहाँ देखी हुई थी आपकी कहानियां, जहाँ आपने बैकग्राउंड चेंज किया है. जैसे जैसे जैसे कहानियां आगे बढ़ती जाती है वैसे वैसे उसकी बैकग्राउंड. तो हाँ, ओके, तो वो आपने ऑनलाइन सीखा. लेकिन आपने जो स्टेज ऑफलाइन थिएटर भी किया हुआ है ना.
4: हाँ, ऑफलाइन का मौका मुझे हाल ही में मिला. 4-5 साल पहले मैं चेन्नई जैसे बड़े शहर से, छोटी शहर है कोयम्बतूर करके साउथ इंडिया तमिलनाडु में, वहाँ जब मैंने मूव करा, देयर इज अ थिएटर ग्रुप कॉल्ड कैट्स, CATS, कोयम्बतूर आर्ट्स एंड थिएटर सोसाइटी, वहाँ पे ऑडिशन के लिए मैं गई थी. तो वहाँ पे ऑडिशन में जैसे ही सेलेक्ट हुई तो फिर मौके मिले. 3 बड़े प्लेज में मैं लीड रोल प्ले करने का मौका मिला. वो मेरी खुश नसीबी, मैं कहूँगी, इस उम्र में मेरे को मिलना.
3: और मैंने ये भी देखा था कि आपका एक्चुअली न्यूज़पेपर में भी वन ऑफ द स्टोरीज गॉट कवर्ड.
4: हाँ हाँ,
3: है ना.
4: तो न्यूज़पेपर का भी कवरेज था क्योंकि वो काफ़ी बड़ा प्ले था.
3: हाँ.
4: बहुत सारे लोगों को आना जाना, इट्स अ टिकेटेड प्ले नेचुरली.
3: नहीं, बहुत अच्छी बात है. मतलब होपफुली आप सिडनी में भी आएंगे, आपका कोई प्ले हमें सिडनी में भी देखने मिलेगा.
4: यहाँ पर अगर कोई थिएटर ग्रुप हो तो मैं शामिल होना बहुत पसंद करूँगी. लेकिन अफसोस की बात यह है कि सिर्फ इंग्लिश प्लेज में ही मुझे मौके मिले हैं, क्योंकि कैट्स इज एन इंग्लिश थिएटर ग्रुप. तो तमिल और हिंदी के लिए मौका ढूंढ रही हूँ मैं.
3: अच्छा. नहीं, वो भी मिल जाएगा आपकी. आप तो काफ़ी फ्लुएंटली बात करती हैं हिंदी में.
4: हिंदी, तमिल और इंग्लिश, तीनों लैंग्वेजेस मेरे काफ़ी
3: मल्टीलिंगुअल. हाँ, तो ये हमारी खासियत भी है. वैसे लेकिन थैंक यू. पद्मा जी के साथ बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन इसके बीच में हम एक गाना सुनेंगे. इनके इन्होंने मुझे 5 ही फेवरेट गाने दिए थे, 5ों मैं चला रही हूँ आज. तो अगला गाना सुनने के बाद हम वापस लौटते हैं और थोड़ी बातचीत करने के लिए पद्मा जी के साथ. थैंक यू.

0: आज ही अपने जीपी या फार्मासिस्ट से बात करके पता करें कि कौन सा वैक्सीन आपके लिए सही है. healthdirect.gov.au NSW flu वैक्सीन पर जाएं.
1: Alive 90.5.
0: नमस्ते और आपका स्वागत है इंडिया कनेक्ट में. मेरे वीना शशि कुमार और आज हमारी स्पेशल गेस्ट पद्मा जी के साथ. तो पद्मा जी, थैंक यू अभी तक आपने जो बताया आपकी आपके सफ़र के बारे में. तो मुझे बताइए कि आपकी जो कहानियाँ हैं वो कैसे आप डिसाइड करती हैं? आप लिखती हैं कहानियाँ, है ना?
2: हा?
0: तो टारगेट ऑडियंस आपके कौन हैं? आप कैसे डिसाइड करती हैं? आपकी कहानियाँ कहाँ से आपको प्रोत्साहन या इंस्पिरेशन मिलता है कहानियों के लिए?
2: देखिए, कहानियाँ सुनाने के बहुत सारे शैली होते हैं. मैं जो शैली फॉलो करती हूँ वो मंच शैली है.
0: ओहो, मंच शैली, ये क्या होता है?
2: दैट्स परफॉर्मेंस स्टाइल.
0: अच्छा,
2: मतलब कि जैसे कि स्टेज में हम लोग थिएटर परफॉर्मेंस करेंगे, वैसे भी कहानियां सुनाया जा सकते हैं. तो अगर मेरी कहानी में कुछ किरदार हो तो मैं जैसे जैसे एक एक किरदार के डायलॉग सुनाती हूँ तो मैं उन्हीं के रोल को निभा कर सुनाती हूँ.
0: अच्छा, हाँ.
2: तो वो भी एक शैली होती है.
0: अच्छा,
2: और रही बात ऑडियंस की, तो फिर देखिए माहौल पर निर्भर करता है. ज़्यादातर स्टोरी टेलिंग इवेंट्स थीमेटिक रहते हैं कि मदर्स डे हो गया या तो फिर न्यूरो डाइवर्स लोगों को एड्रेस करने के लिए हो गया. तो जो थीम है उसके हिसाब से स्टोरी को चुनना होता है. कई बार स्टोरी ही हम लोगों को चुनते हैं. हम स्टोरी से बिफोर वी सेलेक्ट द स्टोरी सेलेक्ट अस, ये होता है कई बार. और मैंने पाया है कि कुछ थीम्स के लिए अगर मैं खुद की स्टोरी सुनाऊं तो उसमें मुझे फ्रीडम ज़्यादा रहता है कि मैं जो बताना चाहती हूं उसको खुली तरह से बता पाती हूं. तो मैं ज़्यादा वो ही करती हूं. एंड आजकल तो अडल्ट स्टोरी टेलिंग अलग से होते हैं. ऑनलाइन स्टोरी टेलिंग तो बहुत ज़्यादा चल रहा है क्योंकि पीपल कैन सिट इन द कम्फर्ट्स ऑफ देयर हाउसेस एंड कहानी सुन सकते हैं, बता सकते हैं. और बच्चों के लिए तो बस है, कहानियाँ बनी ही बच्चों के लिए है. तो बहुत सारे कहानियाँ तो बच्चों के लिए हर इनफैक्ट ऑफलाइन बहुत ज़्यादा होता है. स्कूल्स में होते हैं, देर आर स्टोरी टेलिंग इवेंट्स, फेस्टिवल्स दैट हैपन फॉर स्टोरी टेलिंग. बुक लाइब्रेरीज, बुक्स वगैरह जगह में बच्चों के लिए न केवल कहानियां पढ़ी जाती है बल्कि सुनाया भी जाता है ताकि यू गेट द चिल्ड्रन हुक्ड टू रीडिंग. उनको फिर से पढ़ने की आदत डालने में कहानियां सुनना सुनाना बहुत काम आता है.
0: हाँ, ये तो आपने सही कहा है. जब बच्चे बैठ के वो चाव से कहानी सुनते हैं वो उनका उनका दिमाग भी थोड़ा खुलने लगता है, क्रिएटिविटी भी बढ़ता है ना.
2: बिल्कुल.
0: हाँ,
2: पढ़ने में ही ज़्यादा क्रिएटिविटी बढ़ता है क्योंकि जब हम पढ़ते हैं तो सिर्फ अक्षर नहीं होते हैं, दिमाग में सारी फिल्म चल रही होती है.
0: हाँ.
2: लेकिन जब आप स्क्रीन में देखते हो तो आपका आधा काम दिमाग का टीवी कर देता है.
0: हाँ.
2: तो रीडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. और इसीलिए हमारे उम्र के, मतलब आपको नहीं बोल रही हूँ, आप तो बहुत छोटी हैं, मेरे उम्र के टाइम में पढ़ना बहुत ज़्यादा विचरण था. इट वाज़ वेरी पॉपुलर बिकॉज हमारे घर में टीवी नहीं हुआ करते थे. तो या तो फिर कहानी सुनो, सुनाओ, रेडियो सुनो, या तो फिर बातचीत करो. इंटरैक्शंस बहुत होते थे जिससे यू कुड स्टडी द अदर पीपल. व्हेन यू स्टडी अनदर ह्यूमन बीइंग दैट्स व्हेन स्टोरीज के बारे में स्टोरीज बनती जाती है.
0: तो ये तो बात आपने सही कही है. और इसमें तो आप बताइए जो पैडीज फील्ड ऑफ स्टोरीज है जो यूट्यूब में आप कैसे कहानियां हैं उसमें, आपके स्टोरीज के कौन से जॉनर्स हैं, क्या क्या आप टारगेट करती हैं?
2: तो मेरे फेवरेट जो है एक मिन्ना सीरीज जिसको मैंने लिखा था. दैट बहुत सारे क्रिएटिविटी कोविड के टाइम में ही हुआ था घर में बैठे बैठे. तो मिन्ना सीरीज में मीनाक्षी करके एक लड़की रहती है जिसके माँ बाप डॉक्टर्स रहते हैं और बच्ची को देखभाल ना कर पाने के कारण, बिकॉज दे आर ऑल द टाइम इन द हॉस्पिटल टेकिंग केयर ऑफ पीपल, बच्ची को गाँव भिजवा देते हैं नानी नाना के साथ रहने के लिए. गाँव के माहौल में मिन्ना पली बड़ी होती है, 6 साल से लेके 8-9 साल तक. तो दादा दादी के साथ रहते वक्त वहाँ का माहौल, गांव वालों के बारे में सीखना, वहाँ के तौर तरीके सीखना, वहाँ मिन्ना को क्या क्या एडवेंचर्स होते हैं. फॉरेस्ट में घूम हो जाती है कभी, या तो फिर कभी मंदिर जाके वहाँ के तौर तरीके सीखना. तो हर चीज़ में सीख तो रहती है. लेकिन मैं मेरी कहानियों में मॉरल बेस्ड तो नहीं बनाती हूँ. जब बच्चे या बड़े सुनते हैं तो उनको उनमें से कुछ जो सार निकालना होता है खुद निकाल लेंगे.

0: करेंगे. मैं कोई नहीं होती हूँ बताने के लिए कि ये सही है ये गलत है. तो वो एक सीरीज है. प्री टीन्स के लिए मैंने एडवेंचर कहानियाँ लिखी है, जैसे फेमस फाइव जब मैं छोटी थी वो एनिड ब्लाइटन वगैरह पढ़कर बड़ी हुई हूँ, तो उसी शैली में मैंने लिखा है. और गोस्ट स्टोरीज, तो कई सारे स्टोरीज जो भी मैंने लिखा है उसको मैंने अपने यूट्यूब चैनल में भी दर्शाया है. और कई ऐसे स्टोरीज हैं जो छपने के लिए रेडी है.
1: अच्छा.
0: और काफ़ी सारे इलस्ट्रेशंस बनाए रेडी बैठी हूँ, बस पता नहीं कब टाइम आएगा, मैं कब मूड में आऊँगी उन सबको छपवाने के लिए.
1: वेल मैं ये मेरी इच्छा ये है कि हम, मेरी भी छोटी बेटी है जिसको मैं भी चाहती हूँ कि वो पढ़ाए और बुक्स पढ़ें और ऐसे थिएटर में आए. तो वो मैं चाहती हूँ कि वो ऐसे चीज़ों में आए, तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि वो आके आपकी कहानियाँ देखें, पढ़ें और उसको एंजॉय करें. तो थैंक यू यहाँ आके मेरे से बात करने के लिए. अगला गाना अभी सुनते हैं और विल कम बैक टू द शो सून.
0: श्योर.

0: Alive 90.5.
1: Something's changed with Mum lately. You're not sure what to do. She wants to stay home. She can, with the right support. We're a small, dedicated home care team. Nursing, personal care, overnight stays, post-hospital care. We can usually be there within the week. One call, no pressure. We'll work out her needs together. Call Santa Clara on 02 8111 8121. That's 02 8111 8121. Santa Clara Home Care, care that feels like family. Station sponsor.
2: The Hills to Hawkesbury Community Newspaper is a family-owned and operated free community magazine. 10,000 copies are printed every fortnight and delivered to 75 different locations across the Hills and Hawkesbury areas. If you're unable to pick up a printed copy, there is free online access at hillstohawkesbury.com.au plus the newspaper's social media sites. The Hills to Hawkesbury team's aim is to inform, involve and inspire, which is why partnering with Alive 90.5 makes perfect sense. Station sponsor.
0: Alive 90.5.
3: नमस्ते और आपका स्वागत है इंडिया कनेक्ट में मेरे वीना शशि कुमार के साथ. आज हम बात कर रहे थे पद्मा जी के साथ जो अभी भी है मेरे साथ, लेकिन ऑलमोस्ट आधी शो तो ख़त्म हो गई है, तो फिर मैं थोड़ा जो लोकली क्या हो रहा है इसके बारे में भी बात करना चाहूँगी. पहले तो है इंडिया में अभी एक्चुअली सिडनी के सीन में हमारा कल्चरल इवेंट्स बहुत सारे होने वाले हैं अभी, क्योंकि जुलाई एंड से शुरू होते हैं. रथ यात्रा से शुरू होती है रथ यात्रा, फिर गणेश चतुर्थी आ गया, नवरात्रि आ गया, दिवाली आ गया, बहुत सारी चीज़ें होने वाली हैं. तो रथ यात्रा आज और कल हो रही है, जो मेरे को दो जो पता है मैं बता रही हूँ उसके बारे में. आज तो हुई थी मैक्वारी सेंटर में, और एक कल हो रही है स्वामीनारायण टेम्पल में जो कैंप्स क्रीक में है. सो रथ यात्रा में बहुत सारे जो भजन कीर्तन और गाने भक्ति भरे गीत होंगे, उसके अलावा महाप्रसाद होगा, उसके अलावा बहुत सारे लोग वहाँ जिस मन के साथ जाके रथ यात्रा रथ को पुश करेंगे, जो सेवा होती है उस भावना के साथ जाते हैं, तो वहाँ का माहौल बहुत अच्छा होता है. तो मैं जाने की कोशिश करने वाली हूँ, लेकिन सुबह थोड़ा और कुछ होने वाला है तो उसके हिसाब से हम देख के डिसाइड करेंगे कि कैसे जा सकते हैं, लेकिन ज़रूर जाना चाहूँगी. मुझे थोड़ा फोमो हो रहा है कि मैं जा नहीं पा रही हूँ एज अ फ्रेटर, तो चेंज कर रही हूँ थोड़ी अपनी प्लान्स. इसके अलावा एक जो हमारे स्टेशन के मेंबर हैं श्री ओम केयर, जो एक एज केयर ऑर्गेनाइजेशन है, उनका एक फंड रेजर हो रहा है 23 अगस्त को, जिसका नाम है लहर. म्यूजिकल फंड रेजर है एक ग्रुप, ये इनका हर साल होता है, और जो ग्रुप इनके लिए गाता है बहुत ही प्यारा ग्रुप है, तो अगर आप जा सकते हैं तो ज़रूर जाएं. और ये है 23 अगस्त को पायनियर थिएटर कासल हिल में. श्री ओम के फेसबुक या वेबसाइट में जाके आप देख सकते हैं कि टिकट की अवेलेबिलिटी कैसी है. और जैसे मैंने पिछली बार कहा था, मैं थोड़े ऐसे जो हमारे कम्युनिटी में चीज़ें होती हैं उसके बारे में बात करना चाहूँगी. एक इनिशिएटिव जो मैंने शुरू की थी, इसके बारे में मैंने पहले बताया ही नहीं, बात ही नहीं हुई है, लेकिन संडे को मैं इसका एक शो भी करती हूँ, स्मॉल पिक्चर, अगर आपने सुना हो देखा हो. ये इसकी शुरुआत हुई थी एक मम्स ग्रुप के साथ, जो न्यूरोडाइवर्स, जैसे ऑटिज्म हो, सेरेब्रल पॉलिसी हो, फ्रेजाइल एक्स हो, कि ये बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूरोडाइवर्सिटी हैं, डिसेबिलिटी हैं, और आप यहाँ आके रहती हैं आपके इंडिया को छोड़ के, आपके फैमिली को छोड़ के, तो यहाँ आपके एक लोकल सपोर्ट के लिए ये ग्रुप खड़ा किया गया है. तो अगर आप में से कोई भी किसी को जानती हैं या कोई मम्स को जानती हैं जो ऐसे ग्रुप ज्वाइन करना चाहें, तो मुझे ज़रूर संपर्क करें, मुझसे बात करें इसके बारे में. द ग्रुप इज़ कॉल्ड सुपर मम्स ऑफ सुपर किड्स, क्योंकि और यहाँ हम एक दूसरे की हेल्प करते हैं. तो ये थी यहाँ की लोकल अपडेट. अगर कोई और मुझे कुछ अपडेट्स बताना चाहे तो मुझे ईमेल करें या स्टेशन को कॉन्टैक्ट करें. थैंक यू सो मच. अभी अगला गाना सुनते हैं.

0: 90.5, all the way from the 70s, 80s, 90s and today. Alive 90.5.
1: नमस्ते और आपका स्वागत है वापस इंडिया कनेक्ट में मेरे वीना शशि कुमार के साथ. आज हमने बातचीत की पद्मा जी के साथ, जिन्होंने उनके थिएटर के बारे में बताया, उनकी कहानियों के बारे में बताया. थैंक यू, आपका बहुत धन्यवाद. आप यहाँ आई, जो आप छोटे से ट्रिप के लिए आई हैं ऑस्ट्रेलिया में और मेरे साथ आके आज फंस गई एक घंटे के लिए.
2: वीना, प्लेजर वॉज ऑल माइन, थैंक यू सो मच. और आप जो कम्युनिटी के लिए इतनी अच्छी अच्छी काम कर रही हैं, तो मेरी शुभकामनाएं हमेशा आपके साथ रहेगी.
1: थैंक यू सो मच. और जैसे बहुत सारे आप भी ऐसे कम्युनिटी में बहुत सारे वेंचर्स हो रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं जिसके बारे में मुझे फिजिकली नॉट पॉसिबल टू नो, है ना. तो मैं आपसे दरख्वास्त करती हूँ, जो भी सुन रहा है उससे दरख्वास्त करती हूँ कि प्लीज़ आप अपनी किसी के बारे में जानते हैं जो कुछ अच्छा काम कर रहे हैं तो मुझे ज़रूर बताएं, और मैं उनके बारे में बात करना चाहूँगी इंडिया कनेक्ट में, जो हमारे कम्युनिटी के लिए, ना ही सिर्फ हमारे कम्युनिटी के लिए, पूरी ऑस्ट्रेलियन कम्युनिटी के लिए क्या कर रहे हैं. इसके बारे में मैं ज़रूर उनकी अच्छे काम दर्शाना चाहूँगी. तो थैंक यू सो मच आज सुनने के लिए मेरी बात. लेकिन जाने से पहले मैं आपको मेरा एक फेवरेट कोट है जो मैंने बहुत पहले सुना था, जब छोटी थी तब कॉलेज के कोई फंक्शन में सुना था. ये मैं बहुत दिनों से ये भी सोच रही हूँ कि भाई किसने कहा था ये, लेकिन जिसने भी कहा था बहुत प्यारी तीन लाइनें हैं. सोच को बदलो सितारे बदल जाते हैं, सोच को बदलो सितारे बदल जाते हैं, नज़र को बदलो नज़ारे बदल जाते हैं, कश्तियाँ बदलने की ज़रूरत नहीं, दिशाओं को बदलो किनारे बदल जाते हैं. तो ये तीन लाइन मुझे हमेशा मोटिवेट करती हैं कि सोचने के लिए कि भाई अपनी तरफ देखो कि क्या हम कर रहे हैं, क्योंकि हमारा कभी कभी हम स्टक हो जाते हैं एक चीज़ के सोचते सोचते कि भाई इसको ना ऐसे ही सोचना चाहिए, लेकिन हम थोड़ा सा हमारे सोच को बदलें, हमारे नज़र को बदलें और हमारी दिशाओं को बदलें. जैसे हम जहाँ जा रहे हैं वो बहुत थोड़ी सी बदलाव में बड़ा बदलाव आ जाता है. ये मैंने अपनी बेटी के इसमें भी देखा हुआ है, और जैसे ये सुपर मम्स का जो ग्रुप क्रिएट किया है उसमें भी देखा हुआ है. तो आपके जो छोटे बड़े जैसे भी एफर्ट्स हैं मुझे ज़रूर बताएं, और अगले हफ्ते मिलते हैं एक और शो, इंडिया कनेक्ट के शो में, और एक और होपफुली एक और हस्ती के साथ. लेकिन तब तक एन्जॉय योर सैटरडे एंड एन्जॉय योर संडे. अगर आप न्यूरोडाइवर्स रिलेटेड चीज़ें देखना चाहते हैं तो कल मेरे शो में आएँ 5 बजे. वो अंग्रेजी शो है लेकिन ज़रूर सुने उसके बारे में भी. अभी लास्ट गाना आपका लास्ट वाला गाना बजा के मैं अलविदा कहती हूँ इसके साथ. थैंक यू, धन्यवाद.